ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

पण प्रत्येक वेळी काही ना काही चुकलं. म्हणतात ना, मुझसेना सही गैरव से सही, मुझसेना सही गैरव से सही, तुम्हें दिल लगाना तो आ ही गया. दुनिया में किसी के हो तो गए, तुम्हें प्यार निभाना तो आ ही गया. ऐकूयात पुढचं गाणं बिग स्टार रेखा जिन सोबत.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

पण प्रत्येक वेळी काही ना काही चुकलं. म्हणतात ना, मुझसेना सही गैरों सही, मुझसेना सही गैरों से सही, तुम्हें दिल लगाना तो आ ही गया, दुनिया में किसी के हो तो गए, तुम्हें प्यार निभाना तो आ ही गया. ऐकूयात पुढचं गाणं बिग स्टार रेखा जिन सोबत.

0: छूटेना
1: छूटेना
0: हाथ करले तो करले
1: चाहे मारूटे या बाबा
0: चाहे सर फूटे या माथा
1: अब चाहे काटे मिले।

0: मोहब्बत कभी कभी।
1: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला, आरोग्य आणि विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज।
0: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
2: पहले तुम,
0: पहले तुम,
2: पहले तुम,
0: पहले तुम,
2: तुम,
0: तुम,
2: तुम,
0: तुम,
2: तुम,
0: तुम,
2: तुम,
0: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ,

0: शबनम शराब हो गए,
1: हो देखो शबनम शराब हो गए,
0: देखो शबनम शराब हो गए, देखो शबनम।